मृग माश पायाले गावन कुदन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदन जोद महाबल सूरा गावन तुदन खाणी चारे गावन तुदन खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे।

बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न परावरिया।

अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा,

हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया।

के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तौ पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जजू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दोष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवकुन सुख दियो सत्रन को पालमो बद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घाट घाट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा करत तब देहे अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरपकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव ताका मूड उचारत भेद।

रूप सरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा।

अहंकार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

मैं पाया। ये मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब।

मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहौ, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वासु कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया।

तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पहु जल बिखम अस गाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौल

देखो तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तीरे, कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई।

माता की आशीष निमक नाम श्रोत तुमको हर हर सदा जो जगदीश परिवार वालों हुक्म है सो सत कृपा से कृपा करो समुचित परिवार मेहर प्रिया हाथ रखो।

मन मेरी गहो, हर नाम का ओला तुझे न लाग गए। ता चोला अगता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सृजनहार मालक जी, जिहड़े फिर तेरे नाल जुड़ गए ने, जिन्हां दी ऐसी अवस्था बन गई। पेखत सुनत सदा है संगी, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। जह जह पेखो तै हजूर दूर, कतो ना जाए हे भाई। जे मन दे अंदर उस माल प्रभु सदा अंग संग समझदा है, फिर तेरे तो दूर नहीं है। पेखत सुनत सदा है संगी, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। इनिक सेवा प्रवान होइया भुला चुका दिखी मकनी। आओ अगले प्रोग्राम सरवण करिए गुरु कर देव जी। सत्कार योग ज्ञानी नवनीत सिंह जी, उन्हां पासो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की विचार, गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस वालों फुरते प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मिले सुख नाम हर सुबाह, चिंता लाहे हमारी, अवर न सूजे दूजी ठाहर, हार परयो तौ द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे है, हम निर्गुण लेहु उबारी, सद बख्सिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहु एह बारी, नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहु एह बारी।

नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कमन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देह सजन असी सड़िया।

कौ नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा। अरदास इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाह श्री भगवती जी साहे दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना निधा वेता है सब थाए होना सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाए होना सहाय दसा पातशाह की जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोबिंद रूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप ज्या का कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संगतां नूं निहाल किया है। इस वेले आप जा के हजूर कीर्तन सोहले साहब जी के पाठ हुए सुखासन की सेवा हुई बाणी का पाठ करद्या सुखासन की सेवा करद्या अनेक ही प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गई होणगियां अंजान बच्चे समझ के बख्श लो अगो वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। आप जिया के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल वतीत हुआ रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल वतीत करा अमृत वेले का जागना बख्शना। इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं आप जी अपने आसन से विश्राम करो समूह संगतान छुट्टियां बख्शो अखरवाद घाट पड़िया पुचुक माफ करना सर्व दे कार्ज रास करने सही संत प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਮੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਬਿਸੁੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਸ਼ ਸੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਯਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸ ਹੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਚੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਯਾਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ
जह मुश्कल होवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावह सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करूरी बंध न परै हर का नाम जपत निसुतरै अनिक माया रंग किख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग इहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तय पार पराही अनक बिघन जय आए संगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मलक बहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइयै साध कै संग जिह मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडाए महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा कोना सियानू हर का नाम तह नाल पशानू जह महा पयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जह त्रिखा मन तुझ आकरखै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन के हरि नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन सोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे बियोग जान राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन काओ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात इहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म क्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमाय कर राती वर्तनेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीस रखीवै अगन माहे होपन होमत प्राण कनक अश्व हैवर भूम दान नेवली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै ताओ भी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया तरै जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत स्याण पजम का पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै
देख अनेक अगन नहीं बुझ है, कोट उपाव दरगह नहीं सिज है, छूट सुनाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, आवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै, जे को आपो ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय साधु गावै, जे को अपनी सुबालू रह, साध संग ए होमै शूरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्श पियासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट जीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निरतन कौ धन तेरो नाऊ, निथावे कौ नाऊ तेरा खाऊ, निमाने कौ कब तेरो मान, सगल कटा कौ देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो, आपे आपन संग आप प्रब राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उदम मैं उदम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जास सुन रसन बखानी, सगल थान ते उहु उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक, निर्गुनियार यान्या सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत राख, नानक निबही नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मैं जिने उबारिया, बार भविष था तुझे प्यार दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन, इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहो तौ नानक सीजै, जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है, सोत प्रात मीत बनता संग हस है, जे प्रसाद पीवह शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भोगह सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ लेहु प्रभ आपे, आद अंत जीव राखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निद पावै, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसे बिसार मुगद अजान, सदा सदा ए पूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस थिर कर मानै, जो हो वन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै तोए, गर तब प्रीत भस्म संग होए, अंध कूप मह पतत बिकराल, नानक काढ लेहु प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कछ करै छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुवा, गल पाथर कैसे करै अथा, जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लिहो ओड़ निभावै, कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कहियै तौ समझै पूरा, कहाँ बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत ऊहा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा करै, संग सहाई सुवावै नचीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै,
दृढ़ कर मन मन प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कन्हेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लाग है आन सो आए, नानक कहू न सी जाई, बिन नावे पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक पी न दे दस पी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर से उनाही चारा, ताको की जय साद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन वूठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगंत साहू अपनी देरास, खात पीत बरताय आनंद उलास, अपनी अमान काश बाहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खुवै, बहुरस का विश्वास न होवै, जिसकी बस्त तिसे आज्ञा राखै, प्रभ की आज्ञा मन है माथ है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सरपर होत जन अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओह बिनसै ओ मन पछतावै, जो दिसै सो चलन हार, लपट रहयो तह अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ न आवह के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तान तान कुटंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीत हस्ता, मिथ्या त्रु मुहु अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को भावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन कि निरारथ दाम, तन तन ते जन जिह घट बस्यो हर नाउ, नानक ताकै बल बल जाऊ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत, जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पिहीन, अवर उपदेशय आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसका अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप ही माने, आप ही आप करत न बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, कुपाव से आनप सगल ते रहत, सब काश जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहे आसुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहं मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जिह प्रसाद छति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै, जिह प्रसाद बसै सुख मंत्र, तिसे त्याई सदा मन अंदर, जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहु तिस रसना, जिहे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हडावै, तिसे त्याग कत अवर लुभावै,
जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताखा जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताकू जस रसन बखान जिह प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा तिहाए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप तो दरगह मान पावै नानक पात से ती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावह तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकि भगत करे हे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ कौ कबहु ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोए प्रभ आपुने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जिह प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नेकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस का है जिह प्रसाद सुनै करन नाद जिह प्रसाद पेखै बिस्माद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यों राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जाप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु पावै साध संग अस थेत मन पावै साध कै संग माया ते पिहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बडाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहु तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस अगोचरला है साधु कै संग आजार सहाय साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साधु संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा
साधु कै संग पाप पलायन साधु संग अमृत गुण गायन साधु कै संग सर्व थान गम नानक साधु कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछु काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मंते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद ना जानै जेता सुनै तेता बख्याना है साध की उपमा ते होगुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एप ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पाव का सह स्वभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए आदे आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनिक श्लोक उर थारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कारै नानक ओ अपरस सगल निसतारै अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्स परत्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन ना सुनै काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते तरै
इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मधे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचै केवल भगत कीर्तन संग रचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओ वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत पूजै मूल सुख मैं जानै असथूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपांतर उर तारै पशु प्रेत मुगध पाथर को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान आपो ने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं बेयोग तैसा सुवारण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो व्रताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ आपे करण करावण जोग प्रभ भावै आपे करण करावण जोग प्रभ भावै सोई फुन होग पसरेओ आप होए अनित तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहाल सलोक पुस्तक करे अनेक जन अंत न पार वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीरथवासी कई कोट वन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तहर है कई कोट काब काब विचार है कई कोट नवतन नाम त्या वह नानक करते का अंत ना पाव है कई कोट पहे अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिर कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो जित जित लावो तेत तेत लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखयत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच सब ते निरा सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर
ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੇ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਪਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ, ਤਿੰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿੰਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਇਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤੱਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਹੋ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਪਾਰ ਵਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਕ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜਿਉਨ ਭਰ ਮੈਂ ਪਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जीवनवंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस कौ कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जून परमावै धन भूम काजो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिस पै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै तनवंता हुए कर गर्भावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटाय अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व किरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कश होए तब इस कहो सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब

ਸਲੋਕ ਤਜਹੋ ਸਿਆਨਕ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਹੁ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹੇ ਅਗਹਾਏ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਮਾਰਾ ਰਾਖੈ ਏਕੂ ਆਪ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪੁਰੋਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬੇਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੇਹ ਜੀਓ। ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮੱਥਾ। ਬਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਨ ਤਾਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਇਥ ਉਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ। ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ। ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ। ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਨ ਚਾਲੇਤੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਅਭਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰ ਹੈ ਤਿਨ ਮੰਤ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ। ਜੋ ਕੇਸ਼ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮਿਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਨ ਆਏ। ਆਪ ਸਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾਖੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ ਕਾਮ। ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ। ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹੇ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੇ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ। ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ।
जो काश कर है सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाग थी बसंत संगचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाईऐ साध संग हर कीर्तन गाईऐ अनेक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै कोट गही संतै दराया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक फौजी वालन हार भूखे को देवत आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखिका लहना पाहे सब किश तिसका उकरने जोग तिस बिंदु सर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया ते होलोए जाकै हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत सची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसते पर नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सोजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्संद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मान एहो अनराओ मन सा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनिय है घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याहे त्याहे भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल प्रोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जैन दे जन दास नाम त्यावा है से तेहो गुण मैं जाको परमहाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बेद कीनो बिस्थार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदहे सुन श्रवण कर कृपा जिसे आप नाए नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाकर सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत ऊत पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश सत नृत बूजै जे कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भावै सो वर्तिया
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਟਣ ਹਾਰ ਜਾਖੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੁਵੜ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪਹਿ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਬਤ ਹਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕਉ ਭਿਨ ਨ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਰ ਬਿਬੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਹਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਾਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਘੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕੱਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਜਿਸ ਤਿਸਕੇ ਕਰ ਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੁਭਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਾਹੇ ਹੀ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨਉ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਾਨ ਸਰਬਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਾਧ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਘਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਨ ਸਾਹੈ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੇ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ
बीस बिसवे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर कौ बल जाओ सर्ब निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मह जन जन्म है पार ब्रह्म एक है आप नहीं कश परम सह सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करण अघने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जिह बा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरबानी निराहार निरवैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाहीं कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुण पास आठ पहर हर का नाम ले साच उपदेश सेवक काउ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह रखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भारम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाठ वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाहो चूका निरपहो होए बसे सगल ब्याद मानते खै नसे जिसका सातिन कृपा थारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोए कोत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साधक संग राच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक साथ न चले बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद में उर तहारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मर मंत एक आस रखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ तहवै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख कौ नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनक उपावे रोग न जाए रोग मिटै हर अब खद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगै परवान मन प्रभु दौ हर कै नाई दैद सतावते आवै ठाए ताको बिघ न लागै कोय जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउं रत्न जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावन छूटन हारे सिमरत सासत बेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबन था इनते कहो तुम कवन सना था राज रंग माया बिस्थार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासवारी जैन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार पूत सात हर कू नाऊ सह सुभाय नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियान पसगली मना साध संग पावे सच तहना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जप मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मान तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनक बिसथार एक ते पहे एक आराध प्राशत गए मान तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगौ तूर पार ब्रह्म मेरे सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवाओ चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महान सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सब पूरी राव रहे आ साध संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम सुमाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब केश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया साजन संत करहु एहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरह नाम जपाव हो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुख का होवत नासु नानक नाम जप हो गुण तासु उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मान ताने अंतर एही सुआउ नेत्रों पेख दर्स सुख होए मन बिदसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला कू पावे संग एक बस्त दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहे आ सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका पे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाश न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात
जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर कसूग कहो किसे व्यापत, जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मूखा किस होवत भरम। आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब सेव साकत कहो के तठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तर तब कवन निडर कवन कस डर, आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गोपत किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। आपन आप आप ही अचर जा नानक, आपन रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख बात होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपने सोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई, जय सर्व कला पिहे प्रवीण तह वेद कतेब कहा कूचीन। जब अपन आप आप उतार तौ सगन आप सगन कहा विचार, जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप, जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किस व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही परवेश, जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप आप पति आरा तह कौन कथा कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहु गुण मै कीनो विस्थार, पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पह पहार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोच तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पसार संत प्रताप, दुहु पाक का आपे तनी उनकी सुबा उनहु बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निरजोग, जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावहु तू त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टारु। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आप ही एक आप बिसथार, जात सुभावे तां सृष्ट उपाय आपने पाणे लय सुमाए। तुम ते भिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदरसी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सब तक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मन हो बिसारै। तेस ताज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जा नौ साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार, पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जन आप अंतर जमे रहे ओ ब्याप, प्रत पाले जीयन बहुत जो जो रचियो सो तिसे तिहात। जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया।
जन लागा हर एक नाए जिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर आन दिन पूजै गुर के पैर इह लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो हो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देका करहु उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुआउ आठ पहर प्रभ पेखु नेरा मिटै अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावह मन इच्छे नानक फल पावह हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाहे दुख दर्द मन ते पहो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवै जाए तिस ते दूर कहां को जाए उबरै राखण हार तिहाए निरपहु जपै सगल पाओ मिटै प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन काओ कोई न पहुचन हार सर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक काके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाकी अनूप सफल दर्शन सुंदर हार रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहो तिने हाल ताके निकट न आवत काल अमर पह अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सकट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन ना जाई अचरज बिसमाद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौण पाणी बै संतर माहे चार कुंट दै दिसे समाहे तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देखो ससी अर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कबहु डोलै सर्ब कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुणै अमोल सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नासु नानक तिन मैं इहो बिसासु संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मानै करण करावण हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एक ओंकार अनक कला लखी नहि जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्वनयन आप पेखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया
आज्ञाकारी कीनी माया। सब कह मध अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे कहै। आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लए समाए। इस ते होए सुनाही बुरा, उरै कहो किने काश करा। आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए तां सो जी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुरप्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। उह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआउ, जन कै संग चित आवै नाउ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक

सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै। प्रगटे गोपाल महा तुकै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे।

पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ थारी नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो।

मुक्त निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर ना होवै आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम सांत रित नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप

सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जोर न जीवन मर न जोर जोर न राजमान मंसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी

कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कही जय, कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गनी जय।

या चांझे हैं, या मीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो

पे परपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भिखी अपरमी अभोगी।

नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृज करता अदो उर्द अर्दं अगंग उभरता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेती अपेती अनामंग कामं समस्तु पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी चंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग प्रमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो

अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंतु प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन

नर मूर्त जौ नादसिक देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम हीन पेकत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जान ही जे वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी फुरती लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जाप आद देवन आद मूर्त अप्यो सबै जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्टत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मिक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पे एक सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेक परम वेद प्राण जाकै नेत भगत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही बहु चित मधपार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहू

कालानुकाल अनपूत अंग आभा अभंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड्य अंडन बाड्य चाचरी चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय कृषय भगवती चंद प्रसाद कथते के आ चिज देशय के आ भिज पेशय के आ गंज करमय के आ भंज परमय के आ भिज लोकै के आ दित सुखै के अवतूत बरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक बरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुपौ अनुप है याद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग वहीन के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के जय बुल गैब है कि अफुल गुना है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजुक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमय है के परमं फहिमय है के अकल अलम है के साहिब कलाम है के हुस्न अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशा सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तु सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअगाध रूपे अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिपादे अगंजे अगाते सुभंग सर्व भागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकंग प्रनास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनांग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनीन है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट छन्त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद। नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वेपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद। कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सलसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल की राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नर्तन परनाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमें सुलरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुलेमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपांग है मदपार चंत्व प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड वर्णर अमंड वन पवनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल तल मुदाम अंशे जीवांगु आसन भांग उपमा पार गत मित उदार जल तल अमंड दिशविश अपंड जल तल महंत दिशविश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकारात कथनी अनाथ खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन डट अपार अडीट धर्म अत टीट कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद। करुणालय है हर कालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भारण है त्रित के करण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा तप है अकृता कृत है अमृता अमृत है नर नायक है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है जब्बा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पूजन प्रयाच

बीजे, नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे।

न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए एहो रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होर अन रसा विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाय जग दिखाया गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापए गुर चरण लागे दिन सुभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक क्यों शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नित्र हो मेरे हर तुम मैं जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यो वे संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे का हर एक हर बिनवर न कोई कह नानक नित्र अंद से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए सच है सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह सच है सुन नैनो पठाए हर जीव गुपंद रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पाओ नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी न दसवां द्वार दिखाया तैन एक रूप नव नव निध तिष्टांत न जाई पाया कह नान कर प्यार है जियो गुफंद रख कै वाजा पवन बजाया सचा सोहिला सच है कर गावहो गावो ता सोहिला कर सच है जितै सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बजावे यो सत सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कह नानक सच सोहिला सच्चे कर गावे आनंद सुनो।

सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर सगल समग्री तुम रह सूतर तुम ते हो ऐसो

आप जी बड़भागी हो जो गुरु कृपा सदका प्यार सहित अमृत वेले गुरु बख्शे उदम सदका गुरु प्रेम सदका हाजरियां भर के गुरुदेव जी दियां रहमतां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश कीती है, आप जिया ने अमृतमई बाणियां दे पाठ सरवण कीते, अरदास विच शमूलियत कीती, उपरंत अज दे श्री मुख वाक आप जी ने सरवण कीते हन जो भगत नामदेव जी दी अमृत रसना तो उच्चारण कीते गए। तनासरी राग अंदर सतगुरां दे पावन अंग 697 अते 98 उपर सुभायमान हन। इन्हां पावन शब्दां विच भगत नामदेव जी उस अकाल पुरख वाहिगुरु की रचना इस सृष्टि की गल करते हैं ते उस वाहिगुरु परमात्मा की अभेदता की वार्ता करते हैं कि परमात्मा ने यह जीव पैदा किए, इस संसार एक बाग वांगू एक तलाब वांगू बनाया है, जीव उहदे विच कमल के फुलां की तरह हंसां की तरह रहिंदे ने, तो परमात्मा आप भी इस संसार रूपी सुंदर बाग विच वास करता है। पर जो उस परमात्मा नूं जान लैंदा है, समझ लैंदा है, परमात्मा नूं आवाज मारदा है, जिवें भगत नामदेव जी नूं आवाज मारी तू कुन रे, जिहड़ा परमात्मा नूं जान जांदा है इस माया विचों जों समझ जांदा है, परमात्मा परमेश्वर नूं आवाज मार के फिर अपने नेड़े करता है, ते फिर भगत नेड़े होकर के ही कृपा यही अरदास ही बेनती करता है कि हे वाहिगुरु जमा तो मेरी मुक्ति कर, जमा तो मैनू निवार दे, दुखां पापां अज्ञानता का नाश कर दे। यही भगत की मंग है कि संसार विच जिथे अज्ञानता भरम हनेरिया विच जीव भटक रहा है, जो तेरी शरण विच आ जाए, हे मालक वाहिगुरु तू इस तरह कृपा कर, जमा तू दुखां तो पापां तो दा छुटकारा करवा दे। सतगुरु जी कृपा करन सभना नूं, दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़ती कला बख्शिश करके गरीब नवाज रहमतां करन जी। आओ आसा की वार दे कीर्तन दा समा है। भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी अते उन्हां दा जथा आप जी नूं अमृतमई गुरबाणी दे कीर्तन नाल जोड़ेगा जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।

0: सो करे जित सिर जाए सो दे।
1: परम सम्मान जो गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ रबी बाणी श्री आसा दीवार दे शब्दां छकियां समेत आप दियां ने कीर्तन सरवण किते हन। हुण समा हो रहा अज दे मुख वाक दे विचार दा। सत्कार योगानी परमजीत सिंह जी आप जी नूं अज दे मुख वाक दी कथा सरवण कराउणगे जी। प्यार सहित सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: सत्संग जी
1: बोलो जी।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बास को दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लही आए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्होंने आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदारता तैन करके खालसा बोलो जी। वाहेगुरु ग्रीवनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया बन चक्या देख चलाई देख वाही देख डिट कीता तना प्यारे सत्यारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म सीह दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाईया चशनिया चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा से किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु गुरुद्वार अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम किताब है चित आमर का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब आयत देख देख की फतेह ब्रिद की पैच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान सहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन इशना क्योंकि चंदे बूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा का मन नीवा मत उच मत पत के राखे आप वाहेगुरु गुरु की विनवाज पंथ सदा सहाय दिया गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों को आपके पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दिता अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया जी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दार दियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताने रास हे गिरनवास जी आपके चरण कामना जरदास जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पाए संगतों दर्शन दर देकर निहार दतार दियो बेअंत बाणियों के पास अज में रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वाद कीर्तन किए ने विद्वान भीर ने अज के हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो होइया भुलां चुकां दी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी स्रोत के सच के अनुप्राण करो बाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदे नुकसानिक वादा करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी प्यार ने बलबुद्धि बख्शिश करो भी मनवाज इस खुशी में आप जी दख्शिया दातों में पितर कराब शाह देगा तैयार करके हाल दता आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संघ की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देही पर देह रखा बख्शिश करो जी की मनवाज कृपा करो आप जी बख्शिया दाता जो नगर चुट सवारियां प्रमाण करनी दतार आपके चरणा सेवा करनी सारे तैयारी सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चट करा बख्शो सदा आइए सत्र अपने चरणा सेवा दी भावना बख्शो की पालता करो गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वेले तो लैके दाती आई सब संगतान जी आज दर प्रमाण करो घड़िया ने खिलाओ संगतान दाते तिर फुल पेटा प्रमाण शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब सरकार बता जी आपके चरण का अरदास मितारियां बख्शी से रुद्ध बख्शे ने तारी आज दर के सेवादार बीबी जिंदर कौर अपने बच्चों दिया जाबा वास्ते नौकरियों वास्ते बेनती करते हैं सरकार पिता जी $100 लैके आप चरण हाजरी दार प्रवान करो बख्शिश करते हैं सिर्फ हाजरी प्रवान करो पेटा प्रवान करो दार मेहर करते हैं सरकार जी बीबी जिंदर कौर के बच्चों सोनिया जाबा दाल बख्शी करने की बात करो बच्चों जाबा बख्शी करो नौकरियों की दाल बख्शी करो जी गरीब नवाज परिवार में सुख शांति जारी करा करो दाते इलाज पत्र रखो कमाइया सफल करो जी आधार कृपा करो आधार कर सेवादार भाई मखण सिंह सारे परिवार की तंत्र सुख शांति चाहती कला वास्ते बेनती करते हैं बेअंत मार लगे $101 लैके हाजरी अनुसार प्रवान करो बख्श करते हैं गरीब नवाज जी भाई मखण सिंह के सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुख शांति चाहती कला करो गरीब नवाज परिवार में एकता सुभाग प्याज बख्शी करके सस्त दाद बख्शो कमाइया सबर करो दाते इलाज पत्र रखो जी गरीब नवाज बख्शी करो दता खास संबंध सिख कौम एकता सुभाग प्याज बख्शी करके सस्त रोज दाल बख्शो चैना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार श्रद्धा हर मैदान दीवान फतेह बख्श करके बातचा करो जी गरीब नवाज कृपा करो दूर दुराधे घर बैठिया लाइव कट्ठा की श्रवण कर रही है सारे संगतों की हाजिरी प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आपने कृपा की संगतों को दो बख्शे संगत आपके चैनल धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर लू ਗੁਰਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਕਰ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਸਵਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪੁਨਾ ਚੁਕਾਈ ਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਬਿਹਤਰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਉਤਾਰ ਜੀਓ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਛੋਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਕੇ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ

अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतुल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनंती।

भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पावे, आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल मिलावे। तुसी

अनहद धुनिए सो हिलड़ा, अनहद वाजी शब्द अगाजी, नित नित जिसह बधाई सो प्रभ त्याई।

आठ पहर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याय राम, त्याय सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरे आ, बिनवंत नानक।

हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किल विख काटन पै हरण सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजन नानक नीत ते आए चंत जस गाव हो बड़ भागी हो कर कृपा।

साच संभाले बिन साचे जग काचा। तंदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा। तदै धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भये मनूरा। धन धरनी तर

गर्भ गले भिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया

पै। प्रभ नेड़ै हर दूर ना जान हो, एको सृष्ट सुबाई, एकंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई।

उस सेवक नु कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसे ते थोड़ी है, पर किसे ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु दी प्रसन्नता है, सतगुरु जी टुट के उस नूं सतसंगत दी दात दिंदे ने, नाम दी दात दिंदे ने, अपना बना लैंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्ज रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोग ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करी रही है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बाहरले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु कह रहे हो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की से। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उस नूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साढ़े ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होने वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तो जन्म लेना पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इस नूं मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इत्थे इस नूं सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहिंदे ने कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आई जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जान का गेट बन जाएगा, फिर की होगा। केते रुख विरख हम जीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जोना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दिया, पशुओं दिया, सप्पा दिया भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दिया भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जूना भोगण तो बाद 84 लाख जूना भोगण तो बाद तेनू ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना शरीर में रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर से, कदी किसी के दर से, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो। जो तू परमेश्वर का बन जाएगा,
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

जो जगदीश सदा पजो जगदीश। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी सारे अपने बच्चियां नू ओ असीस जो सानू गुरु पातशाह दे रहे ने, ओ असीस अपने बच्चियां नाल सांझ करिए। ए शब्द सारे माता पिता मिलके सिद्धक सेवक गुरंश दे ए हुने गायन करनगे। उस शब्द विच गुरु अर्जन पातशाह राग गुजरी महला पंजवा गुरु ग्रंथ साहिब 496 ते असी दीदार करते हैं। ते मेरी बिनती है, भावें किन्नी बारी पढ़िया जी, हुने जदों बच्चे पढ़नगे गायन करनगे रत्ता को ध्यान नाल सुनना, हर पंक्ति विच असीस है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद असी देखते हाँ और असी देंदे भी हाँ, घर के बजुर्ग अपने बच्चियां नू की असीसा देने हाँ, जीवंदा रह पुत्रा, खुशियां माण, कामयाबियां होन, गुरु तेरी रखिया करे, ये सारिया गल्लां इस शब्द के अंदर एक उस रूप विच सानू गुरु अर्जन पातशाह दे रहे ने भी ओ असीसा जो बजुर्ग देंदे ने जीवंदा रह ओ सादे जीवन नहीं हो सकता, खुशियां माण ओ सदा वालियां खुशियां नहीं होंदियां, कामयाबियां पर केड़ियां, ओ सानू इतने अमुलक ढंग नाल निराली असीस, निराली मां ते निराला पुत, ओ सानू गुरु अर्जन पातशाह जी ने इस शब्द विच इन्ने सोहने रूप विच संजो के दिती है। आओ असी एक नवी अख नाल शब्द पढ़िए, केड़िया असीसा दितिया ने। शब्द की आखरी पंक्ति है, ए असीस ता लगेगी, ए असीस ता फुलफिल होएगी तुहाडी, भवर तुम्हारा ए मन होवो हर चरना हो कौला। भवर तुम्हारा पुत्र, तेरी मां दी तेनू असीस है कि तेरा मन भवर हो जाए। भवरा की होंदा है, बच्चे कहंदे ने बंबल भी जेड़ा फुल ते बहिंदा है, क्यों बहिंदा है, खुशबू उहदे विचों एसेंस लैंदा है, भवरा फुल तो ओ एसेंस सक कर लैंदा है, ऐ उहदा प्यार है फुल नाल। ते गुरु पातशाह की कहंदे ने, भवर तुम्हारा कौन हो जाए, कौन हो जाए भवरा, तुम्हारा मन हो जाए, ओ बच्चिया तेरी मां दी तेनू असीस है, तेरा मन ओ भवरा बन जाए, ए गुरबाणी तेरे लिए ओ लोटस फ्लावर हो जाए, ए हर वेले गुरबाणी ते एंज बह जाए, उहदे विचों एसेंस सक करन लई, ए भवरा ते करदा ही करदा है, साडा मन ना छुट जाए। केड़ी मां ए असीस देगी
ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ

और तेरी माँ गुरु है, तेरा प्यो तेरा गुरु है। रिश्ता बनाया सी, वो प्यार किया सी, बस ए देखना है साडे बच्चे इस रात तुरंत साड़ी दिलों इच्छा होंदी है, पर ओदे लई सानू बच्चियां नू कहना पेगा, बच्चियो मां कौन होंदी है? माता मत, पिता संतोख। ए मां नहीं है, ए परम ना पाली, तेरी मां तेरा गुरु है। हरजी माता हरजी पिता, तू ओदा लाडला बन, तू ओदी असीस ले। ए असीस ते असी सारिया ने लैनी है, मत भुलेखा खा ली असी मां प्यो बन गए। असी बनना है, असी ऐसी मां गुरु दी गोदी च बह के समझ लेनी है गुरु की दे रहे ने असीस दे रूप च। ए केवल असीस है नहीं, ए समझ है, ए ज्ञान है, ए अकल है। ओ ऐसा मन तेरा हो जाए जागरूक अवेयर, किदे प्रति? अपने प्रति। तू जाग मना अपने प्रति जाग, तू देख मना अपने आप नू देख। ए असीस मिल रही है सानू, आसीस पुता माता की आसीस की है असीस। निमक ना बिसरो तुमको हर हर, तेनू निमक से ना भुले। ए है गुरबाणी दा सिमरन, गुरबाणी सिमरन की करांदी है? ओ तेनू भुले ही ना, निमक हस्ते भी ना भुले। निमक की होंदा है? ए अख दा ब्लिंक करना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड असे तेनू करता ना भुले, जगदीश ना भुले। जगदीश ए पूरी कुदरत दा जेड़ा बना ना ले, उन्हें कुदरत ही नहीं बनाई, ओ बना के अवेसला बह नहीं गया, ओ तेरे अंदर मौजूद है हर हर। ओ हरी ओ ज्योत रूपी च तेरे अंदर वसदा ही पुत्रा। ए पुत्र असियां सारे गुरसिखा इको प्यार, गुरमिता पुत्ता भाइया, सारे गुरसिख गुरु दे पुत्र। सानू सारिया नू ए असीस मिल रही है, पर ए असीस किवें लगेगी? ओ पूरा गुरु पाशा ने शब्द ही संजो के दिता। ए केवल ए दस्तार की है, गुरु दा हाथ है साडे सिर ते, गुरु ने दस्तार दे के अपना हाथ साडे सिर ते रख दिता है। गुरबाणी दा शब्द है ना पाक पाक, ना पाक की होंदा है? पाक नहीं है, मैला है। कौन मैला है? मन। ना पाक पाक, ए ना पाक मन किवें पाक होएगा? कर हदूर जदो तू उनू हाजर मनेगा, जदो तेरा मन हर वेले हाजर रहेगा, ता ना पाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा। ए जिहड़ा तेरा मन खिंडिया रहिंदा ना, स्कैटर्ड रहिंदा है, हर वेले उड़दा फिरदा, पता ही नहीं की सोच रहा है, समा घट है, पर विच पंक्तियां ने की है? सदा चिर जीवो, सदा जीउंदा रह। असी सेम है, पर जीउंदे रहन लई लबना ते पेगा ना मरदा कदों आ। मरदा वा चिंता विच, क्या गुरबाणी ने ऐसे शब्द विच, चिंता छड़ दे, स्ट्रेस छड़ दे, काम का

तू बुलावे बोलदा भी तू है, करदा भी तू है, सुनदा भी तू है, सारी एनर्जी तेरी है। एनर्जी किवें मिले? पंक्तियां नाल जरूर सुनना, समा मेरे को नहीं, मैं ना सारिया पंक्तियां नाल लवा। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, तेनु भोजन खाना पेगा, ए मन नू एनर्जी देनी पेगी, फिर चिंता कित्थों आएगी। जेड़ा मन कमजोर है वो चिंता नाल भरिया है, वो स्ट्रेस नाल भरिया है, वो टेंशन नाल भरिया है। असीं ते कई बार विचार दिया टेंशन की है, बाय वन गेट वन फ्री अजकल लगी है सेल, असीं भी लै लैने, जाओ चिंता भी लै लो जाके। इंज ना करना, पुता माता की आसी, ए आसीसा दे रही है साडी मां सानू। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, सदा चिर जीवो, मरी ना कदी, विसरेगा ते मर जाएगा। निमक ना विसकरो तुमको हर, जिते विसरिया उते मरिया, डरिया उड़िया दौड़िया फसिया। निमक एक निमक जे विसरे स्वामी, जानू कोट दिवस लख बरिया। सो ए असीस है, मन नू भोजन दे, मन नू सवार, ना पाक नू पाक कर, साबत हो जा, साबत मन, पूरा मन, कंप्लीट मन, हाजर हजूर, दस्तार सिरा। दस्तार दस्त कहंदे ने हाथ नू, गुरु दा हाथ तेरे सिर ते रवे, ए दस्तार गुरु दा हाथ है, ए दस्तार गुरु दी आशीर्वाद है, ए दस्तार गुरु दी आसीस है। उस पुत्तर नू जिन्हें एनु मां मनिया, गल ते मनन भी है, कहना और मनना। गुरु मां है सारियां दी है, पर असी मनिए, रिश्ता बनाइए, प्यार करिए वाणी नाल। वाणी तो उपर सानू कोई नहीं दस सकदा जीवन दा सही राह। सुता मेरा समा हो गया, पर हुण तुसी शब्द ध्यान नाल सुनना। केड़ा रंग तमाशा क्या मैनू माड़ना से, केड़ा अमृत क्या मैनू पीना से, ओ फुल ते मैं बैठा रवा, ए गुरबाणी ते ते ओदे विचो अमृत पींदा रवा, ते सदा खुश आनंदे। आओ नन साहब दी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करिए।

0: सतगुर पाया, सहज पाया, मेरी मां मैनू आनंद मिल गया। भुला चिकन दिखे मां जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी का, भैन जी जसबीर कौर जी का। माफ़ी चाहते हैं कि समा घट से मन करता से कि बोलते रहन, और बड़ी गंभीर डूंगी विचार गुरबाणी की कर रहे सन, सो समा अलाउ नहीं करता से कि अगे वधीए, क्योंकि प्रोग्राम इस प्रोग्राम की समाप्ति के बाद रहराज साहब का पाठ जोड़ा होना है और टाइम सिर होना चाहिए। इस करके हम अगला शब्द जो पढ़ना है बच्चों के गुरु अंश सेवक सिदक के पेरेंट्स ने पढ़ना है, इन्होंने भी यो शब्द पढ़ना है, पूता मास्ता की आसीस, जिस तरह भैन जी ने दसिया। सो नाल बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। अगवाई कर रहे हैं लगे गुरु अंश के फादर चेतन दीप।

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दशहरा। हो नाम हर का सदा जांचो देहो पब तरनी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मज्जना। साच न लागे मैल क्या।

0: आप पारस परम त्यानी साच साच पावे आनंद अंदिन हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुरु दिखाया मैर नाई सच मने संगत मीत मिला पूरा नावणो गावे गावण हार शब्द सुहावणो सालाहा सच्चे सालाहा साचे मन सतगुर उन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणीता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता सत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कहे सब कोए केवड़ आखिए हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा पूछ करे आवे दिखला दे सबद सचे गुर मेरा आखन तोतना भगत भंडारी परपुर रेहा सोई नानक साच कहे बैनंती मन मान जय सच सोई आखन तोतना भगत भंडारी परपुर रेहा सोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जय सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राष्ट्रीय महला पहला छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसारा हो नाम हर का सदा जांचो देह पवित्रनी तरा।
1: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी असी सारिया ने अरदास जुड़े हाँ बच्चों की चढ़ती कल लिए अरदास मंगी है गुरु पास तो हुक्मनामा सरवण किया है उस नाल पहलों डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी ने शब्द राही बच्चों असीस दी सो डॉक्टर साहब का भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी का जिन्होंने के अरदास अगवाई की बीबी जगदीप कौर जो कि सेवक दे नानी जी हैं जिन्होंने हुक्मनामा लिया इन्होंने सारे का धन्यवाद। सत्संगत हूँ असी जो असली सैरेमनी है वो ते अपड़ गए हाँ तो बेनती करांगा कि बच्चों ते बच्चे तिने बच्चे सिदक सेवक गुरंश इत्थे गुरु महाराज की हजूरी च आ जाओ। भाई मनमोहन सिंह जी आप जी थोड़ा जहां गाइड करो ते इना दस्तारबंदी की जो रस्म है उन्होंने मैं बेनती करांगा कि उन्होंने पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स आन ते नाल डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी ने भी बेनती है कि वो इस महत्वपूर्ण जो सैरेमनी है वो अपना हिस्सा पाण बच्चे बच्चों दस्तारबंदी अपने घर कमलों नाल पहनाण। सो